या अंबल हाय वन ये से की हम अंबल डिंकलित डिंकलित दीदी दीदी कभी इन लंगली बारो हबेसा आरंका कोयो दीदी दीदी दीदी दीदी दीदी दीदी दीदी